से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।

से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियो को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट

0: Драги слушатели, през изминалия час бяхте с радиопрограма Български хоризонти. Слушайте ни.
1: This is AM 530. CHLO AM. Serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
2: हेलो फ्रेंड्स, टोकरी रेडियो सुनदा माता माता स्वागत है। ते गल्ला बातें इस रोज की करने हैं। आज मैं सोचा तुसी आज मैं जरा जम्मू शहर च घुमाई के आननी हां। अज एक सराटी होई है जा जम्मू शहर दे कुछ इलाके दी। की आखदे तुंदा की आखना है? मी ते लगदा है गल्ला बातें इस रोज की करने हैं की ना अज रेडियो सुनदे सुनदे अस एक कोई जगह की घूमी आ चे। ते मैं सोचा अज मैं तुसी लई चलनी हां बहुत ही खूबसूरत एक बाग च जो कि जम्मू शहर का बड़ा ही प्रसिद्ध बाग है। इतने नजारे जड़े ने बड़े ही मनोरम नजारे ने। तो सुनो पहले आज के एपिसोड का पहला गीत, फिर मैं तुसी लई चलनी हां बागे बहू।

डोगरी रेडियो सुनदा मता मता स्वागत है। ते मैं आ डोगरन सोल नेहा शर्मा ते आ सैर करा दे हे बागे बहू दी। ए जम्मू शहर दा बड़ा गे अच्छा बड़ा गे सुंदर मनोरम दृश्य आला बाग है जो कि तवी नदी दे कंडे बसेदा है।

लेक भी है ते कुल मिलाइए जेड़ा दृश्य है उते बड़ा गे अलौकिक दृश्य है। इत्थे तो साखी सकदे हो तीन चीजें दा बड़ा गे सुंदर संगम है, धरती जल ते हरियाली। इन्हें तीनों दा जो प्रकृति ने इत्थे मेल पाया दा ओ दा के आखने बड़ा गे शैल बड़ा गे सुंदर नजारा है। ये जेड़ा बाग है ये एक किले दे अंदर बहु किले दे अंदर बने दा है। ते जियां कि मैं तुसें दस्या कि बहुत इहदी जो नज़ारे ने इहदी बाग दी जो संरचना है वह प्रकृति ने बड़े ही अनोखे तरीके की बनाई दी है ते मन ते आत्मा दोनों प्रसन्न हो ही जांदे ने। इत्थे इत्थे बहुत अच्छी अच्छी तरह के एक फवारे लगे दे ते पौड़ी नुमा जिहड़ी इहदी संरचना की गई है वह इस दे नज़ारे ही चार चन्न लांदे ने। प्रकृति का ओत प्रोत इत्थे दा माहौल मने की मुग्ध करी ओड़दा है ते जदों अस घूमने जाने उत्थे ते उहदे बाद घर आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है ते राती दा इस बाग दा नज़ारा उहदा तक के आखना। जदों अलग अलग तरह के लाइटिंग इफेक्ट्स पाउंदे ने फवारे पर ते अगे पिछे दे फुल्ले दे उपर जिहड़ी लाइटिंग होंदी है ते बस दिल करता अज इत्थे गे रही अज। इहदी खूबसूरती कन्ने आने वाले जिन्ने भी टूरिस्ट हैं जिन्ने भी यात्रु हैं या फिर लोकल जम्मू के लोग हैं वो बड़े गे आकर्षित हो ही जाते हैं।

दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बशुस यमी प्रोग्रामक होस्ट रमेश मरहटा अजिक प्रोग्राम हेतुस हाजिर। दोस्तों कशीर हंस चकत सब्दान तो कशीर मंजस यारबल लगभग हर गाम शहर आसान यारबल गयो यथस पोय जमा ओ सब्दन या पोय ओस वसान अथस अस सान माज बेने बान चलान बे कथा बाथा करान या अस अस श्रांति करान बे अस पलव ते चलान यारबल सिटी आस आसन नग्न आम तौर पे गामन मस नग्न मज अस दपान पोन हस छु वुजान वुजित ओस ये पोन आसन बिल्कुल ठंड अथ पोनिस मज अस अस श्रान ध्यान करान अस थो पनी कथ बात जारी वुले बोजो ये खूबसूरत

हेलो फ्रेंड्स, डोगरा रेडियो सुनदा मता मता स्वागत है। मैं हूं तुंदी आरजे नेहा शर्मा, डोगरन सोल। ते मेरा जिहड़ा डुग्गर प्रदेश है वह वीर ते वीरांगनाएं कन्ने प्रोचे दा है। इयां के एक डुग्गर प्रदेश दे शूर वीर है जिन्हें की दुश्मने भी सलाम किया। उनकी जिहड़ी वीर गाथा वह अज भी आर्मी च मिलटरी च लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर जरूर शेयर करते हैं। तो जिन्हें भी इतिहासकारों ने इन्होंने पता लगी गई होना है कि ये कौन है। जिया कि मैं तुसें आख्या कि वह पहले शूरवीर है जिन्हें दुश्मन ने सलाम किया, उनकी समाधि दुश्मन के इलाके च बनी ठीक युद्ध के बाद। तो ये जिहड़ा गौरव है अपने आप च, यह सिर्फ इतिहास च एक के बंदे गीत होएगा है। तो ये बंदा कौन है सोचो सोचो। तुस पहले सुनो ये मिठा हरा गीत, उसके बाद मैं दसनी हाँ मैं कुंदी गल करानी हाँ।

बैक फ्रेंड्स, डोगरी रेडियो सुनदा मदा मदा स्वागत है। इतिहास गल करा दे है डुगर प्रदेश दे शूर वीर जिंदा नाम है जनरल जोरावर सिंह जी। इनका जन्म 15 अप्रैल 1786 होया हा। ये इंदू राजपूत फैमिली जन्मे है। हुन प्रेजेंट चो इलाका पौंदा है हिमाचल प्रदेश। इन्हें बड़े निक्के होंदे गे घर छोड़ी दिता हा। इन्हें बड़े गे निक्के होंदे तलवार चलाना धनुष विद्या सब सीखी लेता हा। ते लोग बड़ी तारीफ करते हैं कि निका टूमर च कोई इन्ना कौशल क्यों हो सकता है। ते इंदे उसी कौशल ने उस शौर्य ने इन्हें राजा गुलाब सिंह हुंदे आर्मी च भजाई दिता। इंदी कार्य क्षमता इन्नी अच्छी ही कि सारे बड़ी तारीफ की। इन्हें बड़ी ही जल्द उस आर्मी का जनरल बनाई दिता गया। ते गुलाब सिंह जी ने इन्हें पूरा कार्यभार सौंपोड़िया रियासी इलाके का, अगे पिछे के इलाके का। बस फीक है तो

वेलकम बैक फ्रेंड्स, डोगरी रेडियो सुंदर स्वागत है। तो मैं गल कर रहा थी जनरल जोरावर सिंह दे शौर्य दी। ते इतिहासकार दस दिन की शिव भक्त है बहुत बड़े, ते इंदा मन हा जेड़ी कैलाश मानसरोवर स्थली शिव जी भगवान हुंदी ओह भारत देश की सीमा के अंदर गे होनी चाहीदी है। इसी मंशा लई इन्हें 1841 पर तिब्बत पर कूच करी दिता। आखदे ने कि लड़ाई बड़े महीने चली, साड़ी जीत होनी तो पक्की गए ही, पर बर्फीली हवाएं ते मौसम ने ते खराब औजारे उन्ना साथ नहीं दिता। खाने पीने की कमी भी हुई गई, उपरा मौसम की मार ये नहीं पई कि इंदी टोली दे बड़े सारे बंदे जान देनी पई, ते उन्दे चा एक ए भी है। पर आखदे ने तिब्बत के लोग अज भी गल करते ने कि बड़े शौर्य वीर ते बड़े गे पराक्रमी है। इसे आस्ते उस स्थान पर अज भी इनकी एक समाधि बनाई दी गई है। तो इतने के लोग अज भी कोई न्याणा जमदा है तो उत्थे मत्था टकाने के लिए जाते हैं। आखते हैं कि अस ये प्रार्थना कर

बहुत प्यारा प्यारा सॉन्ग है, मैनू बहुत पसंद है। सो सारे जने खुश रहा करो, कुछ नहीं होंदा, टेंशन लैके जो साड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए ना फिर असी टेंशन भी लै लिए, लेकिन टेंशन लैके वो टेंशन होर ज़्यादा बढ़ जाती है। सो तुसी किसी ने भी टेंशन नहीं लैनी, तो जे तुसी कितने घूमना फिरना है, इंडिया जाने का प्रोग्राम बन रहा है, तो तुसी कॉन्टैक्ट करना है कोमल ऑल लिंक ट्रैवल्स, तो आप दियां सारियां टेंशनां नूं तुसी दूर करना है, क्योंकि कोमल जी ऑलवेज तुहाडे लई जिहड़ियां एयर टिकट्स हैगियां वो इन्नियां वधिया वधिया डील्स लैके आउंदे आ कि तुसी कहोगे कि असी भी घूमन जाइए। घूमदे रहना चाहीदा आ, कई वारी सानूं अपनी लाइफ 'च थोड़ा जिहा ब्रेक चाहीदा है, क्योंकि काम कर करके ये सारे जने थक जाते हो। सो एक ब्रेक चाहिए है, सो ब्रेक लैनी है और वधिया डील लैनी है, तो तुसी पहुँचना है कोमल जी कोल ऑल लिंक ट्रैवल्स, ते नंबर नोट करो इन्हों का 905-239-7711 905-239-7711। ते प्रनीत जी इन्हों को बहुत वधिया डील्स आई हुई हैं, इन्हों का मैसेज आया मैनू टोरोंटो टू दिल्ली अक्टूबर ते नवंबर दी जेड़ी डील हैगी आ वन वे विथ टू पीस ऑफ लगेज $1,490, ते टोरोंटो टू दिल्ली अक्टूबर दी सिर्फ अक्टूबर मंथ दी वन वे हैगी है 1,150 दी विथ टू पीस ऑफ लगेज, ते टोरोंटो टू बॉम्बे अक्टूबर ते नवंबर दी हैगी 1,550 दी, टोरोंटो टू अमृतसर मेरा शहर सो टोरोंटो टू अमृतसर दी वन वे दी अक्टूबर ते नवंबर दी हैगी आ 1,380 विथ टू पीस ऑफ लगेज। सो कॉल कित्थे करनी है तुसी, कॉल करनी है तुसी कोमल ऑल लिंक ट्रैवल्स 905-239-7711। राइट विंडो फोर्स साढ़े बहुत ही वधिया स्पॉन्सर है, साढ़े एडवरटाइजर है गया। सो किसी ने भी हुण सर्दियां आ रही हैं, किसी ने भी आपकी विंडोज़ और डोरस चेंज कराने हैं, तो सब तो बेस्ट है राइट विंडो विंडो फोर्स। सो नंबर है इन्हों का 416-206-3200-416-206-3200। जे किसी ने भी किसी तरह की सर्विस लैनी है, किसी तरह की मतलब कि जे हुण वैदर चेंज होने लगे, हुण तुसी सारयां ने एसी हटा के हुण तुसी हीट ऑन करनी है, सो तुसी कॉन्टैक्ट करना है डक क्लीनिंग लई नानक डक क्लीनिंग दी टीम नूं, और ये डक क्लीनिंग करदे आ, ड्रायर क्लीन करदे आ, डक्ट नूं सैनिटाइज करदे आ, बिफोर एंड आफ्टर दियां तुहाडे नाल पिक्चर्स वी शेयर करदे आ, फर्नेस वी क्लीन करदे आ, रेडियो आवाज़ दा नाम लोगे तुहाडा $150 दे चार्जिस होणगे जिहड़े भी 3,000 स्क्वेयर फीट दे घर तक दे, फिर तुहानूं नाल दे नाल पता है फ्री फिल्टर भी दे रहे आ। सो तुसी कॉल करनी है नानक डक क्लीनिंग दी टीम नूं 416-729-1521 416-729-1521। ते ऑल स्टेट इंश्योरेंस तो दीक्षा गुलेरिया जी नूं कॉल करनी है किसी तरह की भी होम या ऑटो इंश्योरेंस लैनी है, ते कॉल करो तुसी 647-656-2810। ते आह लास्ट आवाज़ दे रही हूँ मैं तुहानूं सारयां नूं, जे किसी ने आपका आंसर देना हैगा, क्योंकि 10 बजे शो ओवर हैगा साडा अज लई। सो तुसी कॉल करनी है 905-673-3337।

Brampton या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 Brampton इंडियन फ्रूटलैंड ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 मेफिल रोड Brampton वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े इंडियन फ्रूटलैंड 9054569900

0: September 18, 7 PM at the Living Arts Center, Mississauga.
1: पहला आया सी बड़ी मोहब्बत देखी, उम्मीद कर रहा हूँ इस बार भी तुसी आशीर्वाद दोगे।
2: मैं आ जा तो मैं नाल नचिए, नचिए पाँच बाहपा, मैं आ जा तो मैं नाल नचिए।
0: For tickets, visit Ticketmaster. For information, call Singh Harjeet at 647-448-1000.
3: तुसी अपने फोन प्लान पे बहुत पैसे दे रहे हो। सेलुलर पॉइंट ते असी तुहाडे लई लेके आया बहुत ही वड्डी सेविंग्स, बेस्ट फोन प्लान्स ते बिना किसी शर्त तो। चाहे तुसी बिजनेस या फैमिली प्लान्स च सेविंग चाहुंदे हो, नो कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन या लेटेस्ट फोन चाहिदा सब तो बेस्ट कवरेज नाल। सेलुलर पॉइंट ते तुहानू सब कुछ मिलेगा। विजिट करो सेलुलर पॉइंट, सेव टुडे, इट्स दैट इजी। अपनी नियरेस्ट लोकेशन cellularpoint.ca ते वेखो। सेलुलर पॉइंट, मोर फोन्स, मोर प्लान्स, मोर चॉइस।
4: A to Z किचन कैबिनेट, भाई वाह क्या किचन कैबिनेट तैयार कर रहे हैं। लकी भाजी दी बनिया किचन कैबिनेट देखे गुआंढ भी बहाने नाल तुहाडे घरे आउंदे हन। शीशे नाल भरिया किचन कैबिनेट वास्ते, डिजाइनर किचन कैबिनेट वास्ते A to Z किचन कैबिनेट। 416-720-7073, 905-720-7073 ते कॉल कर सकदे हो।
5: यार इना इंश्योरेंसा ने ते धुआं कढ़ाता, वधिया ते जायज रेट कित्थों मिलेगा?
6: टॉप फाइनेंशियल इंक तो, जो अपनिया बेहतर ते भरोसेमंद सेवावां लई जाने जांदे ने।
7: क्रिटिकल मॉर्गेज, RESP, RRSP, विजिटर इंश्योरेंस, सुपर वीजा, स्पेशल डिसेबिलिटी प्लान फॉर ट्रकर्स। जे थोड़े कोल 20 नालो ज्यादा ड्राइवर ने ता थानू अनबीटेबल प्राइस लेके देंगे।
6: कॉल करो 20 सालां दे तजुर्बे वाले सुरजीत सिंह पड्डा जी नू 647-300-3100 647-300-3100
7: या मिलो 70 डेल्टा पार्क बुलेवार्ड यूनिट 11 ब्रैम्पटन।
8: You're listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000.
9: Toronto's number one station, AM 530. Punjabi.

0: वाह भाई वाह। शिव दी किताब वर्गी ते ए गीत तुहाडे वास्ते अज गाया जाएगा उत्थे, और तुसी बड़े चंगे हो कनेडा दे विच, तुहानू इहो जिहियां पिकनिकां इहो जिहे प्रोग्राम फ्री मेले देखण नू मिलदे आ, और इह सगू साहब दी बड़ी मैं समझदा दरिया दिली है। पता नहीं किन्ने सालों दे प्रोग्राम कराउंदे आ रहे आ, और किन्ने साल हो गए सगू दा?
1: 15 साल
0: हो गए आ। फ्री मेला ही रखिया ना, बस फ्री मेला ही हुंदा। पहला सुरेंद्र छिंदा साहब किन्ने साल हाजिर लवाई इत्थे?
1: 5 साल लगातार हुण
0: छिंदा साहब ने।
1: हां जी, हरिंदर संधू हुण 4 साल लगातार।
0: चलो चंगी गल है जी, हरिंदर संधू साहब भी आ जाने इत्थे वीर मेरा, उन्हां नाल गलबात भी करांगे। आ मैनूं लगदा अमन जी दुबारा आ गए। अमन जी की हाल है जी?
2: हां जी ठीक है जी, सत श्रीकाल जी सारयां नूं।
0: जी जी सत श्रीकाल जी, दिओ इनफॉर्मेशन मेले दी जी।
2: हां जी, मैं यही कहना चाहुंदी हां सारयां नूं कि जिन्ने भी सुन रहे आ, सारयां ने जरूर पहुंचना जी लाइव ते। हर तरह दे गीत होणगे, परिवारक गीत होणगे साडे, ते आओ
0: सारे। सगू साहब, सगू साहब मैं दस रहा कि तुसी अज नाल गाउणा वी आ भाई। वाह जी वाह, अमन जी।
2: हां जी हां जी,
0: क्या बात है। और तुसी संधू साहब दे आउण तों पहलां थोड़ा जिहा हाजिरी लवा दो, मैं समझदा कि थोड़ा जिहा वधिया माहौल बन जाऊगा होर। जी
2: हां जी हां जी हां जी
0: जी।
2: ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਗੱਲ ਉਹ ਸਿਆਣੀ ਕਰਦਾ, ਦੋਗਲਾ ਦਾ ਹੋਵੇ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਨਿਆਣੀ ਕਰਦਾ, ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਫੈਸਲਾ ਨੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਕਰਦਾ, ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਕਦੇ ਨੀ

0: September 18, 7 p.m. at the Living Arts Center, Mississauga.
1: पहला आया सी बड़ी मोहब्बत देती उम्मीद कर रहा इस बार भी तुसी आशीर्वाद दोगे
2: मैं आ जा तो मैं नाल नचिए नचिए पाच बाहपा मैं आ जा तो मैं नाल नचिए
0: For tickets visit Ticketmaster. For information call Singh Harjeet at 647-448-1000.
3: Toronto's number one station AM 530
4: Punjabi Vrata.

वेलकम टू डेव टाटला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशावादियां उम्मीद करते हैं कि तुहाडा अज दा दिन अच्छा गुजर रहा होवेगा। साडी कोशिश रहेगी 2 बजे तक नैशनल इंटरनेशनल खबरां नाल जोड़ के रखिए। 1 बजे वतनों दूर तुहाडे लई पेश किया जाएगा। हुण तो लैके 2 बजे तक साडे स्टूडियो दे नंबर रहणगे 905-799-0999 799-0999।

0: शुरू करना चाहते हो साढ़े को प्रॉफिटेबल ब्रेकफास्ट प्लेस बहुत ही वड्डी फेमस फ्रेंचाइजी के नाल विद पैटियो एंड इनडोर सिटिंग अवेलेबल है जीटीए के अंदर ए साढ़े को बोस्टन पिज़ा बर्गर किंग बरीटो बॉयज ते कन्वीनियंस स्टोर भी अवेलेबल ने हाईली प्रॉफिटेबल एक्सलेंट लोकेशन सेंट थॉमस के अंदर कमर्शियल बिल्डिंग अवेलेबल है जिसके अंदर कन्वीनियंस स्टोर बनया हुआ है दो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट ने सिर्फ और सिर्फ 6,99,000 के अंदर रेजिडेंशियल लिस्टिंग के अंदर देव भाजी मिसेस सागा लॉर्ने पार्क एरिया के अंदर लग्जरी होम 5+3 बेडरूम का 6500 स्क्वेयर फुट लिविंग स्पेस 60x250 फुट का प्रीमियम लॉट एब्सोल्यूटली अमेजिंग लग्जूरियस प्रॉपर्टी अवेलेबल है जी किपलिंग स्टेशन के नाल एक बेड एक बाथ का कॉन्डो नवी बिल्डिंग सिर्फ और सिर्फ 3,99,000 के अंदर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लंडन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 7.5 लाख के अंदर विद लीगल बेसमेंट कैश फ्लो पॉजिटिव प्रॉपर्टी $4,300 रेंट से चढ़ी हुई अवेलेबल है बैरी के अंदर 4 बेडरूम का घर एक बेडरूम की बेसमेंट ऑफ मार्केट डील है जेकर तुसी बाय सेल या इन्वेस्ट करना चाहते हो मैनु हुने कॉल करो अभिषेक रियल्टर 6347927000 6477927000
1: ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਅਰ ਟਾਈਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਓ 416-677-0609 ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦੁਆ ਕਰਮ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਡੇਵ ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਹੈਵ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਡੇ

0: ना करें, अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है।
1: 47 429 4040 टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन।
2: आज खुश बात हो गई था
3: ओ ता होना ही है जो तो ढिलो वीडियो दा नो फ्रीजिंग नो बफरिंग आला 4K अल्ट्रा हाई क्वालिटी IPTV बॉक्स होवे तई नगदा बनदा ही है।
2: आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है।
3: बॉलीवुड मूवीज ने टीवी शोज वेब सीरीज हिंदी पंजाबी लाइव टीवी चैनल्स एंजॉय करन नो वर्ल्ड्स बेस्ट ते हाईएस्ट क्वालिटी वाला IPTV बॉक्स है ते नाले ढिलो वीडियो कोल गुरबानी रेडियो भी है ते डिलीवरी बिल्कुल फ्री। होर दस क्या चाहिदा है,
4: चल क्या रहे यहां पर?
3: ओ पाजी सेलिब्रेशन 40 इयर्स इन एंटरटेनमेंट बिजनेस।
5: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
3: पर ढिलो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ, एबनीजर एंड गोर रोड 905-204-1313 जां ढिलोवीडियो.com। होर कोई सेवा?
6: एक लाइफ है जिसे लव है,
7: ये कहते मुझसे सब है,
8: और एक घर है जिसका ड्रीम है।

जी दोस्तों सत श्री अकाल, प्रोग्राम सारियां दे विच तुहाडा सभनां दा स्वागत है। मैं तुहाडा दोस्त अते होस्ट जगजीत माहल, मेरे नाल राजवीर बोपाराय जी भी स्टूडियो विच पहुंच चुके ने। अज सोमवार दा दिन, नवे हफ्ते की शुरुआत आगा, नवे दिन की शुरुआत आगा। परमात्मा अगे अरदास करते हैं कि यह हफ्ता सारे लिए खुशियां खेड़े लैके आए, सारे के कम कारा वाधे हो। अज लेबर डे आ, यह कोई छुट्टी का दिन नहीं, आप इन कह सकते। अज उन्हां सारे कामियां नूं सलाम करना बनता गा, चाहे वह फैक्ट्रियां च कम करते हैं, चाहे वह दफ्तर च कम करते हैं, चाहे वह घर दीआं जिम्मेवारियां दे नूं निभाउण दा कम करते हैं, चाहे कोई अपने कारोबार नूं निभाउण दा कम करते हैं। सो अज उन्हां सारे कामियां नूं नमस्कार करना देना गा, सिर्फ आपां इहनूं छुट्टी का दिन ही ना मनीए। सो अरदास करते हैं कि सारे जिदा जिदा के भी कम करते हैं, सारे के कम कार उस तरह का ही वाधा ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਟਹਿਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਬਰ ਡੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੱਠੇ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ।

0: चलाक की मीठी बातें नहीं है, फंडिंग हासिल करें, हमारी फीस काम होने के बाद $199 वन टाइम फ्लैट फीस नो कमीशन, नंबर 437-200-34-71 437-200-34-71 4372643175 कॉल करो, एस्टीमेट लो हुणे
1: 437-200-34-71 437-200-34-71 ते कॉल कीती जा सकदी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच।
0: धन्यवाद
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सो जुड़े हो रेडियो प्रोग्राम सारंग दे नाल।

0: इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
1: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
0: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
1: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे, इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी। जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
2: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
1: 416-509-1509
2: और विजिट insuranceforyou.ca।
3: दोस्तों, देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो नूं या चलो AM 530 ते 24/7 जिन्ने भी प्रोग्राम आउंदे ने उन्हां नूं सुनण वास्ते जां देश प्रदेश नूं लाइव देखण वास्ते लॉग इन करो साडी वेबसाइट नूं www.deshpradeshradio.com या www.deshpradeshtv.com। लाइव सुनना चाहुंदे लाइव ते क्लिक कर लो, जे वाच करना चाहुंदे आ तां ओह ते क्लिक करो, जां फिर अपने IPTV बॉक्स दे उत्ते पंजाबी सैक्शन क्लिक करो, ओहदे उत्ते जाके देश प्रदेश टीवी नूं क्लिक करो, ओहते तुसीं सुन भी सकदे हो, वेख भी सकदे हो 24/7।
4: देयर आर सिंगर्स, देयर आर परफॉर्मर्स, एंड देन देयर आर लेजेंड्स। That has defined generations. The one and only Rahat Fateh Ali Khan, live in Toronto. With Shah Zaman Ali Khan, Sunday, September 27th at Scotiabank Arena. Presented by True Sound Live and Cellular Point. Rahat Fateh Ali Khan and Shah Zaman Ali Khan live in Toronto. For tickets, visit ticketmaster.ca.
5: Malli Tent Services tuhade special events se har ek size de waterproof tents provide karde ne. 10 by 10 feet to leke 40 by 100 feet de tambu ne. Tables se kursiyan vi naal leke aunde ne te tuhade backyard nu banquet hall vaangu banaunde ne. Fancy chairs vi available han. LED glow in the dark bani banaiyan bars, tables te kursiyan vi tusi rent kar sakde ho. Aaj hi Malli Tent Services nu call करो
3: 6479992569 6479 999 2569 6479 999 2569। डिस्काउंट लेके देंगे जेकर तुसी प्रोफेशनल लोग हो जिवे इंजीनियर, टीचर, नर्सेस, डॉक्टर आदि, ता होर भी डिस्काउंट मिलेगा। लंबे समय तो मनु शर्मा हो रही कम्युनिटी दे विच आटो होम कमर्शियल दे बिजनेस इंश्योरेंस कर रहे ने, आज ही इन्हां नूं कॉल कर लो 289

0: are performers. And then there are legends. A voice that has defined generations. The one and only Rahat Fateh Ali Khan. Live in Toronto. With Shah Zaman Ali Khan, Sunday, September 27th at Scotiabank Arena. Presented by True Sound Live and Cellular Point. Rahat Fateh Ali Khan and Shah Zaman Ali Khan live in Toronto. For tickets, visit ticketmaster.ca.
1: Hello, AM 530 to tusi sun rahe ho Desh Pardesh Prime Time Radio.
2: Today vich live galbat karan layi hune call karo 905-564-6444.
1: Sunde
2: raho Desh Pardesh Prime Time Radio. Chalo AM 530 to.
3: Canada vich rehnde hoye har parivar ko लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग ले।
4: इसे लिए मैं अपनी ते वाइफ की इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है।
5: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो तो सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने। पेरेंट्स लिए सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लिए हुणे कॉल करो 416-453-3381 ते 416-457-3381
3: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो। बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे। हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381।
6: Simply Indian brings you all simply delicious deals. Buy one get one free every day sure 10 to sham 7 baje tak on dine in and take outs. Maza lavo Sunday nu paratha plate, Monday manpasand kulcha plate, Tuesday chana bhatura, Wednesday lajawab veg thali, Thursday yummy haka thali, Friday maza lavo saag makki di roti da. A yummy deals is simply Indian this sariya hi locations te. Dining, takeout and catering also available. Call at 905-794-8111. Simply delicious. Matlab simple.

0: करो, कदों तक इस किराए दे छोटे जे घर च रहवांगे।
1: ओए बस, मॉर्गेज अलायंस दे नरदेव सिद्धू नु कॉल करन तक।
2: तुसी सेल्फ एम्प्लॉयड हो, फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज, इक्विटी टेक आउट, प्राइवेट मॉर्गेज या फिर
3: सिक्योर लाइन ऑफ क्रेडिट, इक्विपमेंट लोन या रेंट टू ओन बारे सोच रहे हो, तो मॉर्गेज अलायंस दे नरदेव सिद्धू नु जरूर मिलो। नरदेव सिद्धू जे फड़न के तुहाडी बांह, तो मॉर्गेज तो नहीं हो सकती ना।
2: या कॉल करो 647-294-5503, 647-294-5503।
3: भरोसे अते विश्वास वाला नाम नरदेव सिद्धू, लाइसेंस नंबर 10530।

0: एक चक्कर लगाओ।
1: कैनेडा गए स्टडी वीजा, एक्सप्रेस एंट्री, कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री, स्पाउसल फाइल, पेरेंट्स पीआर, सुपर वीजा, नैनी, वर्क परमिट, फार्मर, इन्वेस्टर या सेल्फ एम्प्लॉयड फाइल, गल की इमिग्रेशन दी हर प्रॉब्लम दा सलूशन लैन लई कम्युनिटी दे जाने पहचाने अते तजुर्बेकार इमिग्रेशन कंसल्टेंट गैरी विर्क नु मिलो।
2: कोई केस रिफ्यूज हो गया या अपील ते चला गया, होवे इमिग्रेशन दा कोई भी मसला, हमेशा याद रखो इको ही ना अते इको ही था CIC इमिग्रेशन। हुणे ही कॉल करो
0: 416-456-6161। जुड़े हुए हो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो दे नाल, ते मैं तुहाडा अपना होस्ट तजिंदर सिंह सिद्धू। और जी कोमल ट्रैवल की कुछ जानकारी दे, इन्होंने कुछ स्पैशल लगाए ने जी। अक्टूबर बच्च जाना इंडिया, तां तो उन्होंने अक्टूबर तो जाके तुसीं नवंबर बच्च भी जाना, था रिटर्न टिकट लाई है ट्रांटो टू नवीं दिल्ली 1490 डल दी, तो कॉल कर लो। एक उन्होंने होर लगाई हैगी 1380 डल दी, अक्टूबर नवंबर दे विच टिकट हैगी आ ट्रांटो टू अमृतसर। कोबल ट्रैवल का नंबर है 905-239-7711, 905-239-7711 उन्हों का टेलीफोन नंबर है। सिंपली इंडियन वाले तो तुसीं अज खाना बैठ के खाओ, नीली ब्रांच ते पहुँचो, जां फिर तुसीं उन्हां दा अज स्पैशल हुंदा मंडे नूं कुलचा प्लेट, चना कुलचा प्लेट एक खरीदो, दूजी फ्री है।

0: locations in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: कार वैन ट्रक दा कम होवे ता याद रखो रॉयल ऑटो सेंटर रिलायबल अफोर्डेबल अते ऑनेस्ट सर्विस जिथे कि मैं भी गड्डियां नु लेके जाना रिपेयर दे लई रॉयल ऑटो सेंटर टेस्ला दे व्हीकल्स ते भी कम करदे कोई भी रिपेयर किसी भी मेक एंड मॉडल सेफ्टी सर्टिफिकेशन उबर लिफ्ट दी सेफ्टी करोनी है स्पेशलाइज करदे ने इलेक्ट्रिकल अते कंप्यूटराइज डायग्नोस्टिक कम च स्टील्स एंड मेलनी रॉयल ऑटो सेंटर एंड एमिशन टेस्टिंग 905-799-1478-905-799-1478-1498 रॉयल ऑटो सेंटर। चलो सुनते हैं जी ट्यून चल रही थी क्योंकि कई बार होंगे कि तुम कह दें नवी यार ट्यून चलाती गाना चलाया नहीं सवाल।